0: की मुक्त कन्हैया के जीवन से संघर्ष करके एक महा डेढ़ वर्ष से 22 बीघा जमीन भाड़ा में लेके व्यवसायिक रूप में खेती करते रहते धान गुहू लाही लगाए मेरी बाली खेती करके परिवार के जीवन स्तर सुधारना में सफल मिल पाते प्रवास क्षेत्रफल में खेती करने का एक अवसर किसान संगे चुनौती थे हो मौसम की अनिश्चितता हवाहुरी खड़ेरी बारी तथा रोग किरा के जोखिम ने उत्पादन में असर पारा हुए से वहाँ मौसम संबंधी जानकारी के कत्ति को महत्व करते था
1: Thank you.

प्रत्येक पहाडीहरूसँग अधिकृत किसान केन्द्र चेकपत्रमा हो। किसान के लाख आवश्यक सिंचाई सुविधा सबैमा मजबुत उपलब्धता हो। उत्पादित कृषि उपज के उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न राज्यसित प्राप्त पहाडलाई उल्लेख गुनासो पुर्याइन्थ्यो।

भविष्य निर्माण के आधार बनाने पहाड़ी ठाड़ों की कथा मेरे संघर्ष हो

0: मिठा ना खाई व्यायाम शब्द करी
1: तुम्हें पानी मदिरा में सेतु लगी नियंत्रण करी आज निर्णय
0: कार्य जीवन अजरा निशा रोग से भाजी स्वस्थ जीवन अपनाई।

0: स्वास्थ्य प्रति हमारे के बद्धता व्यवहारिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में भेटी यहां कुल स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक प्रकार से कौशल्य अस्पताल बासकारी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल से सेवा
0: 24 घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच की रेखा
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पशुटी सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा प्यारालाइसिस को मुंह बाघ बिना नशा डाक हाथ द्वारा अन्य चलना फिजियोथेरापी तथा एक्यूपेशनल थेरापी विधि से उपचार कैसे था
0: नशा डाक बिरामी अंकन के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एक्यूपेशनल थेरापी से सफल उपचार कर दे
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था करेगी असहाय नागरिक एक कर्मी अनाथ

दस बंदा गाँव है, वहाँ से मैं खाऊ से उठे हूँ, शाम होते खेती चीज है और गिर जाए तो मैं सुबह रात को सब सुन लीजिए।

0: निशानालाई भोकेपछि स्वस्थ जीवन अपनाए।
1: निशाना रोग झट्टा बहन ध्यानले जीवन खत्तम हुई।
0: सन्तुलित खाना खाई, व्यायाम शब्द गरी,
1: धुनपान महिलामा चेप्न रही, तनाभरण नियन्त्रण गरी
0: आज पुगेका जीवन अझ निशाना रोगमा बाँची स्वस्थ जीवन अपनाए।

0: स्वास्थ्य प्रति गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे प्रतिबद्धता का नागरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में टिप्पणी यहां का पुनः स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहल कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना अस्पताल से देना सेवा 24 घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच कैसे था
1: प्रत्येक दिन नशा तथा निम्न सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पर्सुटी सेवा नाक का घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
0: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न सेवा उपलब्ध भा पैरालाइसिस को मुख भाग होना नशा का बैलक हाथ द्वारा निचलना बिरंगे मुकनकला वीडियो थेरापी तथा एकुपेंद्र थेरापी विधि से उपचार कैदी था
1: नशा का बिलक बिरंगे मुकन के बिना ऑपरेशन फिजियो थेरापी तथा एकुपेंद्र थेरापी से सफल उपचार कर
0: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था कैदी था असहाय नागरिक एक महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक पूर्ण सेवा में 10% छूट के व्यवस्था कैदी था कोशीले अस्पताल पारी बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी बर्दिया पुरान पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार
1: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 बांसगढ़ी बर्दिया संसदीय फोन को लेकर

0: तीर्थ किस्ता तीर्थ के सामग्री तो पढ़ना हो तीन लाख ऋण ले लूँ तीन लाख से ढेर तीर्थ ले लूँ अम्मन किन्ह पढ़ना परिवार का था
1: वो अपना तीन लाख रुपया ऋण ले रहा थी तीन लाख रुपया किताब के से ला रहा थी ऋण ले कर भाई पोते साथ ब्याज दिया प्रार्थना तो अपना ना था हाजर वो उससे अपना सामो ब्याज रेखा तीन लाख रुपया से ढेर तीर्थ पढ़ना थी।

0: जय गुरु बाबा और कई नगर पालिका आश्रम और गाँव और ग्रुप और गाँव को मुक्त जीवन करा दो कई नगर पालिका आश्रम और जंगल शुरू करे जाए की इच्छा न करे गुरु बाबा मैं कच्ची और शुरू करे जाए क्योंकि
1: I'm gonna

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इसी टेक्नोलॉजी तथा रोग नियंत्रण आश्रा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै वित्तीय पूजामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदर्श अनुसन्धान केन्द्र संगठन

0: इंडिया से उत्पादित हमारा संदेश पर दिया का साथ आजकल रेडियो प्रतिबोध एफएम कोहरपुर और रेडियो हतेमालो जानकी गांव पालिका पार्टियों से कसम प्रसारण की बात हमारा संदेश खरीदारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक से बढ़िया जोखिम न्यूनीकरण संगठित पन्ना हनर मचकारी मूर्तिपूर्ण प्रणाली सर सफाई तथा मर्म चितवा आतंक न्यूनीकरण में सुरक्षित और प्रभावकारी प्रीत काय आचरण सहयोग विद्यार्थी संख्या बढ़ेगा लक्ष्य सहित विद्यालय में ऑटो रिक्शा सहयोग पत्रकार भूखंड से सरकारी कर्ती कमजोरी सुधारना मंत्री अहिर का प्रतिबद्धता मंत्रालय का कार्य संपादन में एक पदक समस्या तत्काल समाधान का संचार मंत्री का निर्देशन समाचार केंद्र से
1: नगरपालिका वार्ड नंबर 5 और 6 मतिपुर में

Saipai, Gloriaan, Patia, Gloria Nagarpalika, Ward Number 4, Marahat, Narayan Nath, Smriti Aadhar, Vidyalaya Ananda Ward, Pariksha, Sukhandaba, Vidyalayama, Vidyarthi ka Pahuncha, Aaj Panaina Uddeshya Le Ayojit, Ek Karyakram ka 30 Pariksha, Sthanan Paikira Hua, Pradhan Number 4, Kumara Pase, Suresh Gautam ka Anusar, Aarthik Chetama, Nimchalak Karyakram ka भर्तिया कृष्ण सारिया के अध्यक्ष व्यवसायी प्रहारी का संरक्षक समूह प्रसाद रिजाव प्रहारी के प्रमुख प्रवेश गौतम बजाय व्यवसायी पर संयुक्त रूप में विद्यालय को प्रथम अध्यापक सुशीला गिरी हना पटरी हस्तांतरण कर विचार कार्यक्रम में बोलती हुआ अध्यक्ष सुरेश गौतम विद्यालय का आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र के घटक सहयोग प्रति आभार व्यक्त करवा उसी का प्रधान अध्यापक सुशीला गिरी दादी का विशेष फल प्राप्त सहयोग विद्यालय का शैक्षिक वातावरण सकारात्मक प्रभाव पड़ना विश्वास व्यक्त करवा उहाँका अनुसार शिक्षा संचालन में आयल पार्षद विद्यालय

संख्या वृद्ध होना अपेक्षा की कार्यक्रम में समर्थक समूह प्रसार विचार विद्यालय का आवश्यकता अनुसार सहयोग कर पाएंगे खुशी लगभग बताइट भारतीय लगाय तराई का जिला में एक ठोल का आकाशीय चल सुरक्षित टाग्र हवा लुक कारण पहाड़ कर्मी सूचना पाए में पखड़ा उष्मा प्रश्वास का समस्या निरंतर कर्मी अत्यधिक पहल कारण पशु सेवा केन्द्र में पखड़ा श्वास प्रश्वास संबंधी समस्या विगत पशु चौकाले का पशुपालक किसान पशु सेवा केन्द्र में पुग्न द्वारा पशु प्राप्ति कृष्ण राष्ट्र का जनजात कर्मी मसे पशु चौपाया समस्या मसे बजाय पशु साथ अधिकृत घनश्याम तिवारी मना पुष्प पार्टी

समस्या समाधान करते दिल्ली पत्रकारिता क्षेत्र कार्यक्रम संचालन सर्व पत्रकारिता क्षेत्र लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ उल्लेख करती सरकार संचार क्षेत्र विश्व सहकारी सुशासन और विकास

your dad. I'm Akira. Turn it like that. This is your dad. I'm Akira. Turn it like that. Many guys are a dead Akira. Turn it like that. Who's he? Your dad. I'm Akira. Turn it like that. Who couldn't live with a tea? Very given the list. Mustafai. वो गलत नहीं होता थी, गरीबी बनी गई, भ्रष्टाचारी, दंत तक इतने मोल बनाकर चालक लगा, फिर से सत्ता आवाज कर चालक लगा, अपने मत चला, अपना विश्वास हो, इस सरकार पर, अपने मत चला, अपना मत विश्वास हो, इस सरकार पर, ये दोस्त नहीं है, जिन्हें कुत्ता पसा कर चालक लगा, पूरे से सत्ता आप आकर चालक लगा, सबको नसीना वाकर उसने पत्र लिखकर बाती, सबको नसीना वाकर उसने पत्र लिखकर बाती, सुधार चित्र तब जंतर लगा कर चालक लगा

con Juan Benveni, Aitiga, Sago Bantar, Upanias, Chisa, Matkuli, Tirani Persekana Kachi. Aku mengatakan kepada semua orang yang berada di sini, kami akan mempersiapkan diri lagi. Saya tidak datar, bukan datar di sini, sangkalan kehilat. Bintulah rani batkoi sangrama sangkalit batkoi. Bintulah rani batkoi sangrama. Dengan batal sangkutai ka, bukan sangkali, jalan sangkali. Oh, ठाकुरान चौधरी का सुनर हो स्मृति मराला बट कोई का संकलन हो वहां का इकला बट कोई संकलन कही था उसने कई बट कोई संकलन कर लिया विशेष हमारा साहित्य का डॉक्टर गोविंद आचार्य जी और साहित्य का डॉक्टर कृष्ण राम प्रधान के संकलन को प्रदर्शित कही था बिंदुरे रानी बट कोई संग्रह हो आज दिन से हमारा अपनापन बुद्धिमान चौधरी द्वारा संकलित बटकोही अपना प्रस्तुत करने वाली कार्यक्रम राजसुदा करना सुनिए आशा करती बुद्धिमान चौधरी का पहला बटकोही लाया हित आदर्श शीर्षक बटकोही

0: पहुंच है, जो कोई यहाँ ऐसा था कि जो रास्ता यहाँ सिटी के भी रास्ते नहीं हो, बहुत ही हो, बहुत बड़ी चीज हो, कुछ बंद काफी हो, लेकिन पुराना क्यों पूरा कस्बों में साफ होता है।
1: आज तीन तरह से किस्ता था लेना नहीं चाहूंगा
2: वो तो मिलन लगू अच्छी तक किस्ता की रसे तो सड़क होता पड़ रहा हो, 3 लाख ऋण लेना हूँ, 3 लाख से ढेर तीर सकूँ, अब मन तीर पड़ना पड़ी बात का था
3: अपना 3 लाख रूपया ऋण ले रहा थी, 3 लाख रूपया फिरता कर सक लगाटी ऋण लेने में रुपये पर साथ ब्याज तीर पर अपना थाना जमा अवश्य अपना सामो ब्याज सहित 3 लाख रूपया से ढेर तीर पड़ना भी
1: अभी कल शर्त को पालना नहीं कह कर नियत दस कर्जा जीतिर बहुकाम लाख का सामा ब्याज मिला हुई कह कर कर्जा भुगतानी में वे मेरी बहानाबाजी करना नाराबाजी करना और दोनों के अवांछित गतिविधि करना गैर कानूनी और वित्तीय अनुशासन विरुद्ध का निंदनीय कार्य हो।
4: एक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो रेडियो गुरुद्वारा एफएम का सहकारी में जनहित पर जारी संदेश
1: आमा को दूध बच्चा को पहिलो औषधि हो, जन्मे को 1 घंटा भित्र अनिवार्य संग्राम शुरू करो, 6 महीना समय आमा को दूध में फेंकाओ, स्वस्थ बच्चा उजालो भविष्य, स्तन पान करो स्वास्थ्य बचाओ।
5: रेडियो गुरुद्वारा एफएम को सहकार्य में स्वास्थ्य कार्यालय संघिया द्वारा जनहित में जारी संदेश।
6: आयु आयु आयु उन्नत राहेत्री जात का नया धान का बीउ अब श्रेष्ठ आयुर्वेद
7: में
1: श्रेष्ठ एग्रोवेद में विभिन्न जात का धान का बीउ हाइब्रिड में एमपी 30/30, 64/44, यूएस 312, IMRS 57/86, उन्नत जात को धान को बीउ में राधा 4, सावित्री 52, सामा मंसूरी राम धान 606, 505, 301 यमुनी जस्ता मसिनो धान को बीउ पनि श्रेष्ठ एग्रोवेद में आई सकेको छ।
6: साथै रासायनिक मल में यूरिया डीएपी पोटास र विभिन्न थाल का तरकारी का बीउ बीजन विषादी पशुपक्षी को औषधि उपचार सुपथ मूल्य में गरिन्छ।
1: स्थान श्रेष्ठ एग्रोवेद बास्करी किसान चोक देखि दक्षिण सामुदायिक पुस्तकालय को पूर्व साइड में

0: आफ्नो भाषा आफ्नै आवाज समावेशी रेडियोको साझा आवाज यो हो रेडियो गुरुबाबा एफएम 89.7 मेगाहर्ज।
1: आज तिनजनाको किस्ता बा
2: मैं तो नीलन लहू अखी त किस्ता तीर्ल से तो सावा घट पर्ना हो 3 लाख ऋण लेना हूँ 3 लाख से ढेर तीर सकू अब मन तीर पर्ना पल्ली बात था
3: हो अपना 3 लाख रुपया ऋण ले रहा थी 3 लाख रुपया फिरता कई सेकल बाटी ऋण ले कर कई पोते साथ ब्याज तीर परतना तो अपना होना था जोगा वो अवश्य अपना सावा और ब्याज कई का 3 लाख रुपया से ढेर तीर पर्ना हुई
1: कबुल करना शर्त को पालना नहीं गई नियत बस कर्जा निकिरना व बहकाऊ में लाख सावा ब्याज मिला हुई गई कर्जा भुगतानी में निर्मित बहानाबाजी करना नाराबाजी करना वा जौन फी अवांछनीय गतिविधि करना गैर कानूनी व वित्तीय अनुशासन विरुद्ध निन्दनीय कार्य हो।
4: युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो रेडियो गुरुबाबा एफएम को सहकारीमा जनहितमा जारी सन्देश।
5: नमस्कार मेरो नाम रजुलाल चौधरी बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 4 बर्फाताल बर्दिया म परगटी जडीबुटी उद्योग भनेर दर्ता गराछु। यसबाट थुप्रै किसिमका औषधी उपचार गर्ने गर्छु। हाम्रो यो प्रगति जडीबुटी उद्योगबाट हामीहरूले ग्यास्ट्रिक अल्सर क्यान्सर बबासिर सुगर मिर्गी जन्डिस पित्त थैली लगायत सबै ठाउँका पत्थरहरूको औषधी उपचार गर्ने गर्छौ। हात खुट्टा झम्कने बाँझोपन विषाक्त चिजले टोकेका सबैको औषधी उपचार गर्ने गर्छौ र हामी औषधी उपचार गर्दै गर्दाखेरि एकदमै गरिब छु भनेर भन्नेहरू वडामा गएर या नगरमा गएर निवेदन दिएर त्यहीबाट सिफारिस लिएर आएकालाई मैले 5 पैसा नलिएर औषधी उपचार गरेको छु। अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा त त्यस्तो सिफारिसहरू आएर उपचारहरू पनि सफल उपचार गरिसकेको छु र अब घाउ खतिरा जस्तो सुकै घाउ खतिरा भए पनि सबै घाउ खतिराहरूमा हामीहरू औषधी उपचार गर्ने गर्छौ। जस्तै मासु पलाएको आँखामा मलबारमा पाठेघर अन्न थैली मुक्त नली कलेजो फोक्सो पित्त थैली आम्बा भुँडीहरूमा मासु पलाएको सबै दिने गर्छौ। मेरो फोन नम्बर 98580-86-128 98480-86-128 98-20-21-29-41 हो। मलाई एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला हस्। धन्यवाद।
1: ए दिदी स्वाद गहना तो बड़ा सुखर बा कहाँ से लड़ो
6: ये गहना मई नेपागंज के पास में गुड्डू जलग्न से लड़ रहा हूँ
1: और तुम अपन गहना कहाँ से नहीं रहो
6: ये गहना मई कौन सुन रहा से लड़ू कौन सुन रहा से लड़ू खाई महीनों पता ना हो सबको मजा ना हो तो का दी एम और देखो सोझी नेपागंज के पास में गुड्डू जलस में गहना हो वन के सोन चांदी के गहना बड़ा मजा रहा ओकर पसंद में नंबर 1 सोन चांदी गहना तैयार करेगो ओ अर्डर करल अनुसार गहना खन बनी खाई।
1: मोनो दीदी हमन के नेपाल का जाना तो बड़ा दूस पड़ बड़ा ढेर भाड़ा लागत हो हमन के पूरा दिन चल जाए
6: तो काली चिंता कर छो 5 मिनट गुड्डू ज्वेलर्स नेपालगंज के साथ आब बांसरी बाजार किसान चौक के लग गए सिद्धार्थगंज के तारियाल बा अब सब कुछ के लग गए पड़ी वो यहाँ तो नेपालगंज के भाव अनुसार सोन चांदी के गहना भी पाइबो।
1: ठीक बात है दीदी आप हमरे इधर उधर नहीं जा आप सोचे हमरे 5 लाइन गुड्डू ज्वेलर्स नेपाल में उसकी शाखा बांसकेली बाजार किसान चौक के लगे सिद्धार्थ पंच के तरे जा पूरे भी नहीं हो ना
7: जुगनी रे हाय हाय जुगनी रे जुगनी रे हाय हाय जुगनी रे
8: हजुर 5 लाइन गुड्डू ज्वेलर्स बांसकेली नगर पालिका पास किसान चौक के लगे सिद्धार्थ भई के तरे मोबाइल नंबर 98-62-13-6-16 और 98-92-93-84-294
1: नोट हमारे 5 लाइन गुड्डू ज्वेलर्स का एक कथो के शाखा सिद्धार्थ बैंक बांसकेली का टर रहा नक्कली 5 लाइन गुड्डू ज्वेलर्स मसी खुशिया रवि
9: किशोर
1: रक्त अल्पता
2: बर्दिया जिल्ला ढेर किशोरी हुकनक म रक्त कमी अर्थात रक्त अल्पता देख पर्वा
1: रक्त अल्पता हुँदा शब्द टटकरा लग्ना चक्करैना अनुहार फिक्का होइना हो पढाइमा ध्यान दिना समस्या ल्याना
2: रक्त अल्पतामा चाहिँ बचकला काइल साग पात दाल गुरी ग्यारा आरा मच्छी सिकार ओ फल फूल आयरन युक्त खाना नियमित रूपमा खाई
1: जंक फूड कम गरी सन्तुलित घर खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्यका आधार हो रेडियो गुरुबाबा एफएम को सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियासी जनहित मजारी सन्देश
9: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो

आदरणीय कविलास हाम्रा प्राचीन सृजनशील आदिवासी समाज बाँसगढ़ी गर्भ्यासी समुदायलाई चलाउँदै समुदाय रेडियो गुबाबाथम उनादी गुम्बा साथ निभाएकोटी अखबार हाम्रा स्टुडियो घरिमा राजीव दास बस्यागलवा हाम्रो आजको सम्पूर्ण सेवा प्रणाली जानकारी गराएकी समावेशी रेडियो सुझी आवाज रेडियो गुबाबाथम शुल्क साथीहरूमा अपना धन्यवाद कल बिहान 5:45 बजे फिर भेट होने बाकी आज प्रसारण से कल भी समय सजा हमारे सकूल में विदा मांगे।